क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर मानो। मन मह इहो सुख तारो, गुण गावह ठाकुर अबनासी, कलमल सगले चारो। नाम निदान नानक दान पावहो, कंठ लाए उर तारियो। नाम निदान नानक दान पावो, कंठ लाए उर तारियो। वाहिगुरु जी।

गावन तुदन चित गुपत लेख जानन लेख लेख धर्म विचारे गावन तुदन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदन इंदर इंद्रासन बैठे देवतया दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड़ा आखै सब कुए के वड़ वड़ा डिठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

भैया आखण वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख पुत भूखै खाए चली है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब सच नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए

जेवड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे केरम सतगुर सरणाए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रासो, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर

अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतहो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना।

चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री आशतो जजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख न हारे, साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दा सुकंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सोख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकारख करा करतारा, प्रजा तारत तब देह अपारा। जब अकारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आ।

ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा।

सवैया, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया सब दोता गावहो हरी केरा मन जिनी वसाया।

ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा गुरु बाण कीता गुरु विटहाओ। जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटुक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनी

किश थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। धन सो वेला जित दर्शन करना, हौं बलिहारी

कथे सासत भगत करें बीचार मुक्त पाइए साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमले आधार जन का

साचा नानक की प्रभ टेक वाहे गुरु धर्म खंड का ए हो धर्म ज्ञान खंड का अखो

धर्म के ते पवन पाणी वैसंतर के ते कान महेश के ते ब्रह्मे काढ़त कड़ी रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत ना अंत केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद

अत पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा कोई न जान तुमरा अंत उचेते सागल समगरी तुमरा सूतर आरी तुमते तुमरी

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस रठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नित्य आवै धाए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज सच्चे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, आप जी ने कृपा की है दाता जी अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दे दार बख्श कीते। सतगुरु गरीब नवाज आप जी का कोटान कोट शुकराना धन्नवाद है जी। इस वेले दीवाना की समाप्ति हुई है। आप जी दे सुख आसन की सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने। आप जी दे दर घर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदे आं ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੈ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੂ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬੇਗਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਾਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸ ਹੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੂਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ।
जह मुश्कल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावह सुख कनेरे सगर सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध ना परै हर का नाम जपत निसुतरै अनेक माया रंग किख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जेहे मार्ग एहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइए नानक गुरमुख परम गत पाइए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनक बिघन जय आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनेक जोन जनमै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहो मन रंग नानक पाइय साधकै संग जेह मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जेह पैंडाए महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को ना सियानू हर का नाम तह नाल पशानू जय महा पयान तपत बहो काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहा त्रिखा मन तुझ अकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मान तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडयाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत काश नाहे बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहु हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वडभागी पाइयै संत की सेवा नाम ते आइयै नाम तुल कश अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होम माय कर राती वरत निम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरै चिर जीवै महा उदास तपिसर थीवै अग्न माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर पुहुम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै ताओ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर काश नाहे नानक गुरमुख नाम जापत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान ना मन ते हुटै सोच करै दिन सर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच
बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै छूटस नाही ऊब पयाल मुहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को आपुना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी सो बालू रै साध संग एहो मैं शूरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन आपूने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पून नहीं लेपा निरतन कौ धन तेरो नाऊ नथावे कौ नाऊ तेरा थाउ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवहु दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हु आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह घट वसै हरे नाम सलोक निर्गुनी यार एयान्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निभ ही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिवारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार बविस्था तुझै प्यार दूध भार जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख्य प्याउ बैठ कौ दैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तौ नानक सीजै जेहि प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सुत भ्रात मीत बनता संग हसै जेहि प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध पे आपे नानक काट लेहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस स्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसे बिसारै मुगध अजान सदा सदा इहो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस थिर कर मानै जो हो वन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तब प्रीत पसम संग होए अंध कूप मैं पतत बिकराल नानक काढ लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान तिहन इसनान अंतर व्यापै लोभ सुआन अंतर अगन बाहर तन सुआ गाल पाथर कैसे तरह अथा जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जान सहज समात सुन अंदा कैसे मार्ग पावै कर गह ले हो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बूझै डोरा निस कहिए तौ समझै पूरा कहा बेसन पद गावै गूंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा त्रै
संग सहाई सो आवे न चीत जो बहराई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन है मन है प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोह ए आहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरिदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गाथ में तो तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देनहार प्रभ छोड़ कह लाग है आन सो आए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक पी न दे दस पी हिर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान काश बाहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगै राखै तब की आग्या मन माथै उसते चौ गुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर पर होगत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओह बिनसै ओ मन पशुतावै ज्यो दिसै सो चलन हार लपट रहे ओ तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साधकी सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के नरारथ दाम तन तन ते जन जेह कट बस्यो हर नाओ नानक ताक बल बल जाओ रहत आवर काश आवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर उपदेसै आप ना करै आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक ऊन जन चरण पराता करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे ही मानै आपे ही आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब काश जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी नेमख नेमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावह तिस को सिमरत परम गत पावह
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਡਾਵਹਿ ਤਿਸ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਸ਼ਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਉਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਾਗਤ ਕਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾਉ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਤਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਧ ਤਿਸੈ ਧਿਆਈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਹੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾ ਸਾ ਚਿਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਹਉ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਾ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾ ਗਹੁ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ

नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब हुत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु थावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया के भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यों नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हों ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहु तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं काश काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग ईहां ऊहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मंते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संयोग साध की महिमा वेद ना जान है जेता सुन है तेता बख्याना है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एकस बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब कौ सोख ब्रह्मज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक को लागै तुल पवान ब्रह्मज्ञानी कै धीरज एक ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्मज्ञानी का ही है गुनाव नानक ज्यों पावक का सह सुभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्मज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्मज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा न पहया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमा

संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर थन के भर ले हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एहे रतन सुनत कुमावत हो तो उधार आप तर लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कह माथे नानक उधरे तिन कह साथे सारण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पहे गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहारी नानक निब ही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहो तिन धान सर्व इच्छा ताकी पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवै आवन जान हर धन खाट चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नाव निद बुद्ध ज्ञान सर्वता है सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख पहने गुर नानक बदनाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाने सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार चुपै चुप न होवै जे लाए रहाल उतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ताइक न चलै नाल किव सुचियारा हुई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह न कोई

मन रखिए भाओ दुख पार हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाने के नाए करी जेती सिर ठोपाई विखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी

ना सुचही जे तिस गुण कोए करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोए न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दूप आपका नाम सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र।

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार, तिस विच जी जुगत के रंग। तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सुभन पंच परवान। नदरी करम पवै निसान, कच पकाई उथै पाए। नानक गया जापै जाए, धर्म खंड काय हो धर्म। ज्ञान खंड काया को कर्म, किते पवन पानी वै संतर। किते कान महेश, किते बरमे काढ़त घड़िए। रूप रंग के वेश, कितिया कर्म भूमि मेर। किते किते धूप देश, किते इंद चंद सूर। किते किते मंडल देश, किते सिद्ध बुद्ध नाथ। किते किते देवी वेश, किते देव दानव मुन। किते किते रतन समुंद, कितिया खानी कितिया बाणी। किते पात नरिंद, कितिया सुरती सेव। किते नानक अंत नंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। तिथै नाद विनोद कूड़ानंद, शर्म खंड की बाणी रूप। तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया न जाहे, ये को कहे पिछे पछताए। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की शुद्ध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोद महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथनि जाहे। ना उहि मरहि न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करहे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जी को कथै तंत नंत। तिथै लो लो आकार, जिव जि हुकम तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सारु। जत पहारा धीरज सुनिया, अहरन मत वेद हथियार। पाओ खलागन तबताओ, भांडा पाओ अमृत तटाल। घड़िए शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर।

माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी

पीते हैं। त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, विरेक है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाथ नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परभंगी परमाते समस्ति विभूते, कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम युगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेतेवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसाह, नमो फूफ फूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानम, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासी, अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बृदकर्ता, अदो उर्द अर्दंग अगंग ओगहर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामंग कामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं, प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है, भुजंग प्रया छंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमस्त्वंग निर्णाते, नमस्त्वंग परमाते, नमस्त्वंग गंजे, नमस्त्वंग पंजे, नमस्त्वंग काले, नमस्त्वंग पाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसीजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी, चरपट छंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवं सर्वंग पेवं, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रुवाल छंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत जौन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेवाद खुदा, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल, जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेत, आद पुरख उदार मूर्त जौन आद अशेष, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग,
जतर ततर दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग। नाम काम बहीन पेखत ताम हूँ नह जाहि, सर्व मान सर्वत्र मान सुदैव मान तुताहि। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक। देव भेव न जानहि जे वेद और कतेब, रूप रंग न जात पात सो जानी के जेब। तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चकर बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन। लोक चौदह के बिकै जग जा पी जे जाप, आद देव नाद मूरत थप्यु सबै जी थाप। परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गण भंजन हार। काल हीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश, धर्म धाम सो भरम रहत भूत लख भेस। अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम। आप रूप अमीक अनुष्ट ते पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत। अंग हीन अभंग नात्मिक पुरख पार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार। सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक, सर्व शास्त्र न जान नहीं जे रूप रंग रेख। परम वेद पुराण जा कह नेत भाकत नित, कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही बहुचित। मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार, आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश। निश्चिन अनास आजानु बाहु साहनु साहू,

अंक काल अनकाल अनुपूत अंग आबा भंग गत मित पार गुणगन उदार गुणगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रनाटे अंडन बाटे चाचरी चंतु प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन मंग जाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सदिशयादृशय कृषय भगवती छंत प्रसाद कथते के आचिज देशय के आज पेशय के आ गंज कर्म के आज परम के आज लुक के आदित्य सुख के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुझा है के आसुक वर्ण के सर्व अपर्ण कि जगतंग कृति है कि चत्रंग छत्री है कि वर्मंग स्वरूप है कि अनुपहु अनुप है कि आद अधिव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहिन्न है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मै रिहा कह कि पाक बेअब है कि गय भूल गय वह कि अफूल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांध है कि राजुक रही मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र दान्य कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र राजय कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र तिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र ताप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कलिमे के परमंग फहीमे के आकल अलामे कि साहिब कलामे के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलामे सलीखत मुदामे गनीमुल से कष्ट है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमाने तमीजुल तमामे रुजुअल निदान है हरीफुल अजीमे रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं सुयुक्त सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैव काम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओ अंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं प्रनास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाथ है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट चंतु प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंतु प्रसाद
नमो नर्कनासी सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरी कै अमितो अमी कै सदैवं प्रभाहे अजय अजाहे भगवती चन त्व प्रसाद जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामिल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करी मुल्क माल है के हुसनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रनाश है वह सुनिवास है के सरबुल गुवन है हमीसुल रवन है तुमाबुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीसुल अलीख है हमीसुल अपेख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जुमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है कि अचलंग नंग है कि मितु अपंग है मद पार चंद्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर भंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अनचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मितुदार जल थल अमंड दिशविश अपंड जल थल महंत दिशविश बेअंत वन पवन आस्त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकारात कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गातु अज जना बातु अन झंझ गातु अन रंज बातु अन टुट भंडारण डट अपार आडीट धर्म अत टीट कर्म अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभार है त्रित के करण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य हैं सर्वनाश्य हैं करुणा कर हैं विश्वंपर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं जपा जप हैं तपा तप हैं अकृता कृत्य अमृतामृत्य अमृतामृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी कृत्य अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत्य अमृतामृत हैं अजबा कृत्य अमृतामृत हैं निर्णायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं कुरनाल्य हैं नृपनायक हैं सर्पायक हैं पापंजन हैं अर्गंजन हैं रिप्रतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्य नमो

स्वरूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासु वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनासु अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख नाम अकाम अगाह अटाह अनाथि परमाथि अजो नियमो निनरागि नरंगि नरूपि नरेके करमंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनि में हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयम पव सुभंग सर्व

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करुणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दख लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
1: वड़ी वड़ियाई दा वड़ा नाम वड़ी वड़ियाई जा सच न्याओ वड़ी वड़ियाई जा निचल थाओ वड़ी वड़ियाई जाने आ लाओ

चक्का चक्की चक तलवार ओले बहुत अनंत लाटू मां धानियां गा पंखी पौंदियां लै नसा सुवे चाड़ पवाई जंत नानक पौंदियां गणत नांत बंधन बन पवाए सोए पै कत नचे सब कोए नच नच हसे चले सर ओढ़ना जाय सुना हो नत्र कुदरा मन का चाओ।

0: कर। जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार, सुख मूर्त नाम निरंजन काया का कर। सतिया मन संतोख उपजा देना क्या विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा, दे दे मंगे सहसा गुणा, सो करे संसार चोरा जारा तक कूड़ियारा खरब विकार।
1: एक हुंदा खाए चले

खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पेयो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव मल्ला दूजा एक कृष्णंग सर्व देवा।

0: मत पिटै वे मत पिटै ए हो न साडा फिटै तन फिटै फेर करेन मन जूठै चुली परेन कहो नानक सत्याई है सुच होवै ता सच पाईऐ
1: गुण जितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे देवड़िया आपे ही कर्म कराइंदा बड़ो बड़ा उड़मेदनी

दर्शन कौ जाइए कुर्बान राव। किल बिख मिटे शब्द संतोख, नाम आराधन हुआ जोग। साध संग हुआ परगास, चरण कमल

मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मध्य को विरला दास। जल थल महियल पे कै भरपूर, नानक उदरस तिस जन की तूर।

जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाओ, अमृत बाणी सुनत निहाल, बिनस गए बिखिया जंजाल, साच शब्द स्यों लागी प्रीत, हर प्रभ अपना आया चीत, नाम जपत हुआ परगास, गुर शब्दे कीना हृदय निवास, गुरु समरथ सदा दयाल, हर जप जप नानक पहे निहाल, परभाती महला पंजवां।

नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग सतगुर भेटै जम ना तिटै जिस तुर होवै संजोग रैन दिन सत्याए हर हर तजहु मन के भरम साध संगत हर मिलै जिस है पूरन कर्म।

राम राम राम राम जाप कल कलेश लोभ मोह बिन सजाए अहंताप रहा आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहि पाप नानक बारिक कछु न जाने राखन कौ प्रभ माई बाप प्रभाती महल्ला पंजवां।

जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिवलावे, सतगुरु पूछ सहज कर पावे। राग नाद मन दूजे पाई, अंतर कपट महा दुख पाई।

गुरु सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई, हौं मैं मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसै मन सोई, इस जग में सब

काम लोभाया, सुत कंचन स्यो हेत वधाया, सब किछि अपना एक राम पराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली। राव गुण निदान तिरंत न पाया, साच शब्द तुझ माही समाया, आवा गौण तुदया परचाया। से भगत जिन सच चित लाया, ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर भेटे।

करण है, खसम न पावे साधु, बिन नावे हूर कमावना, फिक्का आवे साधु, दुष्टि सबावे गुची है, बिकवाती जीवन बाद। हे भ्रम भूले मरो न कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई, बिन सतगुर मुक्त किन्ह न पाई, आवह जाहे।

करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों प्याल जाए क्यों छलिए।

तिन कर जग अठार है काही। किरत न चलै चलाया, गणत न गणी हुक्म पछाणा, बोली भाए सुभाई, जो किछ वरतै तुदै सलाही, सब तेरी वडियाई। गुरमुख अलिप्त लेप कदे न लागै, सदा रहै सरनाई। मन मुख मुगद आगै चेतै नाही, दुख लागै पछताई, आपे करे कराए करता जिन।

कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुर बिन घोर अंधार। दूजा पाओ कर पूज दे मन मुख।

गण इन सन बंदी रसातल जाए, हम गुर राखे हर लिव लाए। आहंग मेव स्यो मसलत छोड़ी, गुर कहया एह मूर्ख होड़ी। एहो निगार घर कही न पाए,

मन मह क्रोध महा अहंकारा, पूजा करह बहुत विस्तारा, कर स्नान तन चक्र बनाए, अंतर की मल कभी न जाए, इत संयम प्रभ किन्ही ना पाया, भगवती मुद्रा मन मोहया माया रहा, पाप करे पंचा के बसरे, तीर्थ नहाए कह सब उतरे, बहुर कमावे हुए निशंक, जमपुर बांध खरे कालंक, घूंगर बांध बजावे ताला, अंतर कपट फिरह बेताला, वर्मी मारी सांप न मुआ, प्रभ सब किच जाने जिन तू किया, उमर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ती नस्ता, देश छोड़ पर दे सहताया, पंच चिंडाल नाले ले आया, कान फराए हिराए टूका, कर कर मांगे त्रिपतावन ते चूका, बनता छोड़ बद पर ना बनता छोड़ बद नदर पर नारी, वेश न पाइए महा दुखियारी, बोले नाही हुए बैठा मुनी, अंतर कल्प पुआइए जूनी, अनते रहता दुख देही सहता, हुक्म न बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पुछो हो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, ज्यों बालू घर ठौर न ठाई, जिसनु भए गोबिंद दयाला, गुर का बचन तिन बाध्यो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नान तिनके संग तराया, जे होवे भाग ता दर्शन पाइए, आप तरह सब कम तराइए, रहा दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिक सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे, साध संग मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माहे समाया, राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण शरणाया, रहा चूका गौन मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुक्त द्वार, हर प्रेम भगत मन तन सदराता, प्रभु जनाया तब ही जाता, घट घट अंतर रविया सोए, तिस बिन बीजो नाही कोए, बैर विरोध छेदे भय भरमा, प्रभ पुन आत्मे कीने धर्मा, महा तरंग ते कांड लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संजम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई, जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसन्न भये गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बिताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करी जा, चरण कमल निम हृदय धारे, गोविंद

देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै कहो बिनो कहया पै कृपाल पै की पाल दयाल दुख भंजन मेरा सगलन देसरा गया रहा हम पापी पखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक धार साज नवाजे मोहे दुष्ट जो खया पार उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कौ नान निर्गुण कौ दाता चरण कमल गुर सरिया देव गंधारी महला पंजवा नाथ नाथ प्रभ हमारे शरणायो राखन हारे राव सर्व पाग राख मुरारे आगे पाछै अंती वारे जब चितवो तब तुहारे उन सुमार मेरा मन सुधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ सादर सारे मन में रखो एक सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ है मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मैं दीजै कर संतन का चेरा राव प्रातः काल लागो जन चरणी निस बासुर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसनाहार गुण गावो साहस सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहियै एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक वेह लइयै राग देव गंधारी महला पंजवा घर के जाय ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जी उपाय छोड़ ना जाय सद ही संगे अनदिन गुर मिल गाए रहाव मिलियो मनोहर सर्व सुखै ना त्याग न कत हो जाए अनेक अनेक भांत बोपेखे प्रे रोम न संसर लाए मंदर भाग सोभ द्वारे अनहथरुण चुन लाए कौ नानक सदा रंग माणे गृह प्रेथी थे सद थाए देव गंधारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आचै भ्रम आयो है सगल थान रे परयो संत पाछै रहा केसो सेवी केसर राधे जो दिष्ट सो गाचै साध संगत की सरणी पाइय परिय चरण रेण मन बाछै जुगत न जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माए आचै आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराचै देव गंधारी महला पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मम मन मोहन प्यारे सबो मद निरारे रहाव राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कुमलारे ब्रह्म हे सिद्ध मुनिंद्रा मैं ठाकुर कही दरसारे बिन दीन द्वारे आयो ठाकुर शरण पर्यो संत हारे कौ नानक प्र मिले मनोहर मन शीतल विकसारे देव गंधारी महला पंजवा हार जप सेवक पार उतार्यो दीन दयाल भय प्रभ अपने बहुत जन्म नहीं मार्यो रहाव साध संगम गुण गावे हर कह रतन जन्म नहीं हार्यो प्रभ गुण गाय बिखय बन तरिया कुल समूह उधार्यो चरण कमल बस्या रिद पीतर सास गिरास उचार्यो नानक कोट गई जगदीसर पुनः पुनः बलिहार्यो राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन भीख मोहन रहत निरार रहाव कथन कुन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते अदगार आत सुंदर बच तरस्याने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत हिमार्ग खंडे तार कौ नानक तिन भव जल तारी जले प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं पिखरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा आना संसार को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाव बो बेअंत अत बड़ो गाहरो था नहीं अगूचा तोल न तुलिये मूल न मुड़िये कत पाइये मन रुचा खोज संखा निकत पंथा बिन गुर नहीं पहुचा कौ नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंधारी महला पंजवा मैं बहु विद पेख्यो दूजा ना हीरी को खंड दीप सब पीतर रव्या पूर रहो सब लोग रहाओ गामा गम्मा कवन महिमा मन जीव सुन सो चार आश्रम चार बरना मुक्त पाए सेव तो गुर का शब्द डाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कौ नान पव सागर तरिया हर निद पाई सहजो
राग देव गंधारी मल्ला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रे हर एक जान एक रे गुरमुख जान राव काहे प्रम तहो तुम प्रमो न पाई रव्यारे रव्या सर्वथान जो बसंतर काष्ट मजार बिन संयम नहीं कार्य सार बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताजब मान कौ नानक पाए है परम निदान देव गंधारी पंजवा जानी न जाय ताकी गात रहाओ कह पख कह पे खारो हो कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व से दयार साधक सुनर दे ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचर दिन रात गम गम ठाकुर आगाद गुण बे अंत पन नानक कह न जाई पर परात देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाय करण हार पौ नाही सुख सहज पौ नाही सुख सहज आनंदा अनेक ओही रे एक समार रहाओ सफल मूर्त गुर मेरा माथा है जत कत पेखो तत तत साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा काट काट अंतर साहेब नेरा ताके शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत न पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साकत स्यो कर उल्टी रे झूठ है की रे झूठ प्रीत छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग न छुटकी रे रहाओ जो काजर पर मंदर राख्यो जो पैसे कालू की रे दूरो ही ते भाग गयो है जिस गुर में छुटकी त्रिकुटी रे मांगो दान कृपाल कृपा ने द मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा हेठ रुल सीरे राग देव गंधारी महला पंजवा घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हो बल बल जाओ गावन पावन संतन तो रह चरण उआ कह पाओ रहाओ जासन बासन सहज खेल करुणा में एक अनंत नु बैठाओ रिद सिद्ध निध कर तल जग जीवन।

बाज हो हर बाज उड़ीणिया मेरी जिंदड़िए ज्यों जाल बिन कमल उदासे राम गुरपुरै मिलाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर प्रपासे राम धन धन गुरु हर दस्या मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम। राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर नाम है मेरी जिंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हम माया बेख है मेरी जिंदड़िए हरे अमृत बेख ले जाए राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम ते आए राम हर भाग वडे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए जो बालक लग दुध खीरे राम हर बिन सांत न पाईए मेरी जिंदड़िए जो चातरक जल बिन टेरे राम। सतगुर सरणी जाए पाओ मेरी जिंदड़िए गुण दसे हर प्रभ केरे राम जन नानक घर मिलाया मेरी जिंदड़िए करवाजे सद कनेरे राम। मान मुख हो मैं विछुड़े मेरी जिंदड़िए बिख बाधे हो मैं जाले राम जो पंखी कपोता बनाया मेरी जिंदड़िए त्यों मान मुख सब वस काले राम। जो मोह माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए सायम से मान मुख मूड बिताले राम। जन त्राहे त्राहे शरणागति मेरी जिंदड़िए गुरु नानक हर रखवाले राम हर जन हर ले बुबरे मेरी जिंदड़िए तुर भाग वड्डे हर पाया राम। हर हर नाम पोत है मेरी जिंदड़िए गुर खेवड़ सब तराया राम हर हर पुरख दयाल है मेरी जिंदड़िए गुर सतगुर मीठ लगाया राम। कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम दृढ़ाया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीर्त नाम है मेरी जिंदड़िए हर कीर्त हर मन तारे राम हर हर नाम पवित है मेरी जिंदड़िए जब हर हर नाम उधारे राम। सब केल बिख पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़िए मल गुरमुख नाम उतारे राम वड पुनी हर त्याया जन नानक हम मूर्ख मुग्ध निस्तारे राम। जो हर नाम त्याए दे मेरी जिंदड़िए तिना पंचे वस गताए राम अंतर नाम रिंद नाम है मेरी जिंदड़िए गुर सतगुर लख लखाए राम। गोर आसा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़िए हर मिलया भुख सब जाए राम तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़िए जन नानक हर गुण गाए राम। हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़िए पर द्रोही ठग माया राम वड भागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुरपूरे गत मित पाया राम। गोरे अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए फिर मरता बौड़ जीवाया राम जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए तिनके सब दुख गवाया राम। आतू उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जिपिये पाप गवाते राम पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चौकुंडी चौ चुग जात जाते राम। हूं मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हरे अमृत हर सर नाते राम अपराधी पापी उतरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम। बिहागड़ा महला चौथा हो बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम अधारो राम गुर सतगुर नाम दे रड़ाया मेरी जिंदड़िए बिक भौ जल तारण हारो राम। जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जयकारो राम नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए सब दुख निवारण हारो राम। सारसना धन धन है मेरी जिंदड़िए गुण गावे हर प्रभ केरे राम ते श्रवण भले सोभनीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुनै हर तेरे राम। सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुर देख राम ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर रस हर हर लेख राम तिस जान के पग नित पूजी है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम ने सह राम।
तर्त पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम से आवे राम पौन पानी बसंतरो मेरी जिंदड़िए नत हर हर हर जस गावे राम वाण त्रिण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम से आवे राम नानक से हर दार पहनाया मेरी जिंदड़िए जो गुरमुख भक्त मन लावे राम बिहागड़ा महला चौथा जिन हर हर नाम ना चेत्यो मेरी जिंदड़िए ते मनमुख मोड़ ए आने राम जो माओ मोह माया चित लाए दे मेरी जिंदड़िए से अंत गए पछताने राम हर दर गए ढोई ना लहन मेरी जिंदड़िए जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरमिल उभरे मेरी जिंदड़िए हर

सो मोहत सफल है मेरी चिंदड़िए, जित हर मेरा चित आवै राम। जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़िए, जम कंकर नेड़ नाया वै राम। हार वेखै सुनै नित सब किछ मेरी जिंदड़िए, सो डरै जिन पावक मते राम। जिस अंतर हिरदा सोध है मेरी जिंदड़िए, तिन जन सब डर सुट कते राम। हर निरपव नाम पति जिया मेरी जिंदड़िए, सब चख मारन दुष्ट कुपते राम। गुरपूरन पूरा नानक सेविया मेरी जिंदड़िए, जन पैरी आन सब कते राम। सो ऐसा हर नित सेविए मेरी जिंदड़िए, जो सब दुसाहिब वड्डा राम। जिन एक मन एक इरादिया मेरी जिंदड़िए, तिन्ना नाही किसै दी किछ चड्डा राम। गुर सेविए हर महल पाया मेरी जिंदड़िए, चख मारन सब निंदक कंडा राम। जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़िए, तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम। बिहागड़ा महला चौथा, सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जाना है, जो जी कमाई है राम। हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़िए, सब वेखै मन मुकराई है राम। मन मुखा नो हर दूर है मेरी जिंदड़िए, सब बिरथी काल गुआई है राम। जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए, हर हाजर नदरी आई राम। से भगत से सेवक मेरी जिंदड़िए, जो प्रभ मेरे मन पाने राम। से हर दरगह पहनाया मेरी जिंदड़िए, एहने साज समाने राम। तिन कै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए, रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए, मिल साधु संग अघाने राम। हे रसना जप गोबिंदो मेरी जिंदड़िए, जप हर हर तिसना जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए, तिस मन नाम वसाए राम। जिस पेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए, सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिलाए मेरी जिंदड़िए, नानक हर गुण गाए राम। थान तनंतर रब रहा मेरी जिंदड़िए, पार ब्रह्म प्रभदाता राम। ताका अंत न पाई है मेरी जिंदड़िए, पूर्ण पुरख विधाता राम। सर्ब जिया प्रत पालदा मेरी जिंदड़िए, जो बालक पित माता राम। सह स्याणप नह मिले मेरी जिंदड़िए, जन नानक गुरमुख जाता राम। छकायक बिहागड़ा महला पंजवां, चंत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का एक चंबो देखिया मेरे लाल जियो, जो करे सु धर्म न्याय राम। हर रंग अखाड़ा पाए ओन मेरे लाल जियो, आवन जान सवाए राम। आमन ता जाना तिने किया, जन मेदन सिर जिया। एक ना मेल सतगुर मैल बुलाए, एक परम भूले फिर दिया। अंत तेरा तू है जान है, सब मोर है असमाए। सच कहे नानक सुनो संतो, हर वरत है धर्म न्याय। आवो मिलो सहेलियो मेरा लाज मेरे लाजियो, हर हर नाम अराधे राम। कर सेवो पूरा सतगुरु मेरे लाजियो, जम का मार्ग साधे राम। मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगह शोभा पाइये। जिनको विधाते तुरो लिखिया, तिना रहन देन लिव लाइये। हमें ममता मोह छुटा, जा संग मिलिया साधे। जन कहे नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अराधे। कर जोड़ियो संत कतर होए मेरे लाल जियो, अबनासी पुरख पूजे हराम। बोबे पूजा खोजिया मेरे लाल जियो, है मन तन सब अर्पे हराम। मन तन धन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावै। जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, जो प्रभ अंक समावै। भाग मस्तक होए जिस कहे, तिस गुरु नाल समेहा। जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजेहा। वैद खोज धाम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा घर आए राम। हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिसमें रह समाए राम। सर्बे समाणा आप स्वामी, गुरमुख प्रगट होया। मिटिया नेरा दुख नाठा, अम्यों हर रस जोया। जय देख जय देखा तहा स्वामी, पार ब्रह्म सब ठाए। जन कहे नानक सतगुरु सतगुर मिलाया, हर पायड़ा करया। राग बिहागड़ा महला पंजवां, अत

गोविंद लालना मिलाओ कंत निमाणिया नैन तरसन दर्श परसन नैनी रहन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन पय सगल सिगारा नानक पयम पय संत जपय।

लाने मोहे हर जाब लग न मिलै राम मिलन को करो उपाव किच हमारा न चलै राम चल चित बित अनित प्रे प्रे बिना कवन विधि न तीजिय खान पान सिगार बिथे हर कंत बिन क्यों जीजिय आस प्यासी रहन दिनियर रह न सकिय एक तिलै नानक पयम पसंत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिलै सेज अनेक प्रिय संग दर्शन पाय राम अवगन मोहे अनेक कत मैल बुलाय राम निर्गुण माणी अनाथ बिनवाय मिलो प्रभ कृपा निधे प्रम पी खोय सह सोय प्रभ पल पेखत नव निधे गृह ला लिया वै मैल पावै मिल संग मंगल गाय नानक पयम पसंत सरणी मोहे दर्श दिखाय संतन का प्रसाद हर हर पाया राम इच पुनी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिन सरैणे सुहावी आनंद मंगल रस कना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कमल रसना गुण पन ब्रह्म लो मो बिकार था के मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संयोग मिलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरा अंदर नाम वखाणा राम अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागे तेरा पाणा राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाहीं तुझ बिना सम्राथ गाथे अपार पूर्ण जियो तन तन तुम मना मूर्ख मुगदा नाथ चंचल बलही नीच जाना बिनवंत नानक सरन तेरी रख लियो अवन जाना साधा सरणी पाई है हर जियो गुण गावे हर नीता राम तूर भगतन की मन तन लगो हर जियो सब पत पुनीता राम पतिता पुनीता होए तिन संग जिन विदाता पाया नाम राते जी दाते तिन नित देह चढ़ै सवाया रिद सिद नाम निद हर जप जिनी हर जियो से पूरे सहाराम बहुत खजाना तिन पै हर जियो हर कीर्तन लाहाराम काम क्रोध न लोभिया पै जो जन प्रभ सेवरात्या एक जन एक मन राम कै रंग मात्या लग संत चरणी पड़े सरनी मन तिनायो महा बिनवंत नानक जिन नाम पुल्लै

दुख रोग न पव व्याप जिन्नी हर हत्याया संत प्रसार तरे पव जल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन सांत्याई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच कुनी हमारी। बिहागड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वाद सुख न रहनड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसो सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रे रंग राती सहज माती महा दुरमत त्यागनी गह पुजाली नी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक धार कृपा राहो चरण संग लगा। मेरी सखी सहेलड़ी हो प्रभु का चरण लगा मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंग है हर भगत पाया प्रभु से आई है जय मिलिय हर जना मान मोह बेकार तजिय अर्प तन धन एहो मना। बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रमपीर हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिय हर नाम नित नित नित जप है हर नार सुहागणे सब रंग माने रण न बैसई प्रपुरख चिराणे न दुख पावै प्रभ त्यावै तन ते वडभागिया सुख सहि सोवै पिकिल बिक खोवै नाम रास रंग जागिया। मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाणे बिनवंत नानक मन इच पाई हर मिले पुरख चिराणे तित गृह सोहलड़े कोड़ नंदा मन तन राव रया प्रपरमानंदा।

अंग तेरा कछ न चाले बिना गोविंद नामा। देश वेश सुवर्ण रूपा सगल ऊने कमा। ओतर कलतर न संग सोभा हस कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साल संगम सब मिथे असंसारी। राजन क्यों सोया तू नींद भरे जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिल लाही राम। बिल लाहे केते महामोन मोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाण उपाव था के जह पावत तह जाही। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र घट घट आही। बिनवंत नानक जिन सा

ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना होए महला तीजा क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए जेकर साहे मनो न विसरे ता सहला मरना होए मरना ते जगद डरे जीव्या लोड़े सब कोए गुर प्रसादी जीव तुम रहे हुक्म बूझे सोए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साध जीवन होए पौड़ी जय आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाव हर आप जपावै आपे सतगुर मेल सुख देवै अपनिया सेवक आप हर पावै अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ न आवै जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चक चक आवै जावै सलोक महला तीजा राम राम करता सब जग फिर फिरै राम न पाया जाए अगम गोचरिया तबडा तुल न तुलिया जाए कीमत किन न पाया कित न लया जाए गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वस्या मन आए नानक आप म्यो है गुर कृपा ते रह समाए आपे मिलया मिल रहा आपे मिलया आए महला तीजा एह मन ए तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मोल न आवै लाहा सत ही होए खादा खर्चिया तोट न आवै सदा सदा ओ दे सहसा मोल न होवै हानत कदे न होए नानक गुरमुख पाईऐ जाको नदर करे पौड़ी आपे सब घट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वरतदा आपे ही जाहर सा जुग छत्ती गुबार कर वरत्या सुन्ना हर उथै वेद पुराण सास्ता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूही बाहर अपनी मित आप जानदा आपे ही गौहर श्लोक महला तीजा हौ मैं बेच जगत मुआ मरदे मरदा जाए जिचर बेच दम है तिचर न चेतई की करेग अगै जाए ज्ञानी होए सुचेतन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक इथै कमावै सो मिलाए अगै पाए जाए महला तीजा तुर खसमे का हुक्म पया विन सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिलिए अंतर रव रहा सदा रहा लिवलाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए जन्म मरण का भौ गया जीवन पदवी पाए नानक एह मर्तबा तिसनो दे जिसनो कृपा करे रे जाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए ध्याना आपे मुनि वरतदा आपे कथा ज्ञाना कौड़ा किसे न लग गई सब ना ही पाना उस्ताद भर न सकिया साध साध कुर्बाना श्लोक महला पहला कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार महला पहला हिंदू मूले भूले खुटी जाही नादर कहा सी पूज कराही अंधे गुंगे अंध अंधार पाथर ले पूजे मुक्त गवार ओहे जी आप डुबे तुम कहा तरनहार पौड़ी सब क्यों तेरे वास है तू सच्चा साहो भक्त तेरा गे कै पूरा वे साहो अमर भोजन नाम हर राज राज जन खाहो सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार नाम नानक हरिया गम गाहो श्लोक महला तीजा सब किच हुक्मे आवदा सब किच हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपो जाने दा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बूझे जिसनों कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनों गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वसाए पेखी जोग न होए नानक ऐसा विरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जन तो पाइन आपे आधार आपे सुखम भालिया आपे पासार आपे काती होए रहे आपे वड परवार नानक मंगे दान।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ख जूनी सैभंग गुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला घर पहला अमली अमल ना अंबड़ मच्छी नीर ना होए जो रत सह अपने तिन भाव है सब कोए हो आरी वन्या कनी है वन्या तो साहिब कह नावै रहाओ साहेब सफल्यो रुकड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पाए हो तिन बलहार जाओ मैं की नदर न आवई वस हबिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पीतर पाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते धोखा तां लह जा सिफत करी अरदास वड़हंस महला पहला गुणवंती सौरा व्या निर्गुण कुके काए जे गुणवंती थी रह तापी सौरा मन जाए मेरा कंतर सालू की धन अवरा रावे जी राव करणी कावन जे थी है जे मन धागा होए मानक मुल न पाई है लीजै चित परोए राहो दसाई ना जुलाए अखां मड़ियास तै सह नाल अकूणा क्यों थी वै घर वास नानके की बाहरा दूजा नाही कोए तैसे लगी जे रह पी सौरा वसोए वढ़ंस महला पहला कर दूजा मोरी रुण चुन लाया भैने सामने आया तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया तेरे दर्शन विटो खनिया वन्या तेरे नाम विटो कुर्बानो जा तू ता मैं मान किया है तुद मन किया मेरा मानो चूड़ा पन पलंग से मुंदे सन बाही सन बाहा इते वेस करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा नाम नियार न चूड़िया ना से वंगुड़िया जो सकंठ न लगिया जलन से बाहिड़िया साब सैया सौ रावण गैया हो दादी कह दर्जावा माली हो सखरी जीता सह एक न पावा माठ कुंदाई पट्टिया भरिया मांग संदूरे अगे गई न मनिया मरो विसूर विसूरे मैं

मन निर्मल होए संतान तूरे चरण कमल हृदय उतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा बढ़ंस महला पंजवा सात संग हमर हारे अमृत पी जय ना जियो मर न कबहु ची जय वड़ पागी गुर पूरा पाई आय गुर कृपा ते प्रभु ते आई आय रहा और रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर पुरा पय निहाला जतक पेखो सा जातक अत पेखो साधु सरना हर गुण गाय निर्मल मन करना काट कर अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वढ़ंस महला पंजवा विसर नाही प्रभ दीन दयाला तेरी शरण पूर्ण कृपा ला रहा जय चित आवै सुथान सुहावा जित वेला विसरता लागे हावा तेरे जी तू सद ही साथी संसार सागर ते काट दे हाथी आमन जाना तुम्हें की आ जिस तू राख तिस दुगन थी आ तू एको साहेब वरना होर बिनो कर नानक कर जोर वढ़ंस महला पंजवा तू जनाए ता कोई जाने तेरा दिया ना खाने तू अजर च कुदरत तेरी बिखमा तेरी बिस्मा रहाओ तू आपे कारण आपे करना हुक्मे जमन हुक्मे मरना ते नाम तेरा मनता ने आधारी नानक दास बख्शी तुम्हारी वढ़ंस महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे से जे सो खेल खिलाई है बालक रह न सकै बिन खीरे मेरा अंतर भुख न उतरै माली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रण का बिन दर्शन क्यों मन धीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेलो मित्र सुखदाता हो जी की मेरी सब वेदन जाने ने सुना वह हर किया बाता हो एक खिण तिस बिन रह न सका ज्यों चातरिक जल को बिल लाता हो क्या गुण तेरे सर संभाली मैं निर्गुण को रख लेता हो पई उडीनी कंत कहो अम्माली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगण विसरे बिन फिर किता न लेखा ये कापड़ तन न सुखा वे कर न सखो हो वेस जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिना गए हम या देसा मैं साब सिगार बनाया माली बिन फिर काम न आवे जैसे बात न पुछिया माली तां बिरसा जो मन सब जाए तन तन ते सुहागणिया माली जिन सो रहा समाए हो वारिया तिन सुहागणिया माली तिनके धोवा सद पाए जि चिर दूजा भरम सा माली ते चिर मैं जानिया प्रभ दूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु माली ताया सा मन सा पूरे मैं सर्व सुख सुख पाया माली फिर सर्व रहा भरपूरे जा नानक हर रंग माणिया माली गुर सतगुर के कै लग पैरे वढ़ंस महला तीजा यशपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच बाणी सच धुन सच शब्द विचारा आंदन सच सलाहना धन धन वडभाग हमारा मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ दासन दासा होए रहे ता पावे सच्चा ना हो रहाओ जेहवा सची सच रती तन मन सच्चा होए बिन सचे और सलाहना जा सह जन्म सब खोए सची खेती सच बीजना सचा वापारा अन दिल नहा सच नाम तन भगत परे भंडारा सच खाना सच पहना सच ठीक हर नाओ जिसनों बसे तिस मिले मैली पाए थाओ आवे सचे जावे सचे फिर जूनी मूल न पाए गुरमुख सदार सच सचियार है साचे मह समाहे अंतर सचा मन सचा सची सिर सनाए सचे थान सच सलाहना सत गुर बलिहार जाओ सच वेड़ा मूर्त सच जित सचे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सचा साव आकार नानक सचे मिले ता मिलाए आपे लै मिलाए ज्यो भावे त्यों रखसी आपे करे रिजाए वढ़ंस महला तीजा मनुआ दै दस्ताम दाओ कैसे हर गुण गावे इंद्रिय प्याव रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावै वाह वाह सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पी जय रहाओ सब जीन मन निर्मल होवै ता हर के गुण गावै गुरमती आपै आप पछाणै ता निज कर वासा पावै ये मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम पए हर की सरनाई पात्र डुबदा कर लिया साची वड्याई बेख से अमृत पए गुरमत बुद्ध पाई एको परमल पए अंतर वासना वसाई
मानस जनन दुलंभ है जग मैं खटिया आए पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन में भूले बिख लगे अला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द न पाया मुख हर हर सब को करे विरले हृदय बसाया नानक जन का हृदय बसया मोख मुक्त तिन पाया। वड़ हंस महला पहला चंत कोंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है नाता सो परवान सच कमाई है जब साच अंदर होए सचा जब साच अंदर होए सचा ताम सचा पाई है लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए बहिया भला कही है सुरत साब लिखाई है काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है ताम कया कहन जा तुझे कहाया अमरधर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मन लागा दुख डेरा टाया सुख मन मैं आय वस्या जाम तय फुरमाया नदर तो दे अरदास मेरी जिन्हें आप उपाया ताम कया कहन जा तुझे कहाया वारी कसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसा न आग झगड़ा पावना न पाए झगड़ा स्वाम से थी आप वावना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रुआवना जो दे सहना मन कहना आख ना ही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मंग देख खसम भाव सो करे किच पुन दान ने करनी नाम तुलना समसरे नानका जन्ना मिलिया करम होवा तुर कदे सब ओ पाईन आप आपे नदर करे वढ़ंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाणा सब उपाई आप आपे सब समाणा सर्बे समाणा आप तू है उपाय तंदा लाइया एक तुझ किए राजे एक ना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाणा नाम तेरा है साचा सदा मैं मन भाणा दू गया सुखाय समाणा गावन सुर न सुगड़ सजाणा सुर न सुगड़ सजाण गावै जो तेरा मन भाव है माया मोह चेत नाही एला जन्म गवाव है एक मूड़ मुगदना चेता मूले जो आया तिस जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा वक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवा पाव कर लागा पाओ शरण पुराणी सौ पुराणी तिना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़े सुवाया एक कर्म धर्म न होए संयम जाम न एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हो बलिहारी साचे नावै राज तेरा कभो न जावै राजो ता तेरा सदा ने चले कभो न जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जो सही समावै दुश्मन ता दुख न लागै लगै मुले पाप नेड़ न आवै हो बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुग जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरा द्वारा जपै ता सचा एक मुरारे साचा मुरारे ताम जपै ना मन वसावै परमो भुलावा तुझे किया जामे चुकावै गौर प्रसादी करो कृपा लिहो जमो उबारे जुग जुगंतर भगत को तुम्हारे वड्डे मेरे सवा लख पारा क्यों कर करो बिनंती हवा आख न जाना नदर करे ता साच पछाणा साचो पछाणा ता मेरा जाम आप बुझावै दुख भुख संसार की सहसा ए चुकावै बिनवंत नानक जाय सहसा बुझै गुर बिचारा वड्डा साहब है आप अलख अपार तेरे बंके लोहे दंत रिसाला सोहने नाक जन लमड़े वाला कंचन काया सोने की ढाला सोवन ढाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेली हो हंसन सा बग बगाल है मन की जाला बंके लोहे दंत रिसाला तेरी चाल सुहावी मुदराड़ी बाणी कोकिन कोकला सरल जुआणी तरला जवानी आप पानी मछ इच मन की पूरी है सारंग जो पग धर है ठिम ठिम आप संधूर है श्री रंग राति प्रमासी उद गंगा वाणी बिनंत नानक दास हर का
तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा चंते कोंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिर कह रंग रती मुइये सो बावंती नारे। सचे शब्द मिल रही मुइये पिर रावे पाए प्यारे, सचे पाए प्यारी कंसवारी। हर हर स्यो ने हो रचाया, आप गुआया ता फिर पाया, गुर कह सब समाया। सात अन सब सहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी। नानक सात अन मिले मिल लई, फिर सापे सचे सासुआरी। निर्गुण मंतड़िए फिर देख अधूरे राम, गुरमुख जिनी राव्या मुइये फिर हर रव्या पर पूरे राम। फिर राव रया पर पूरे वेख यूरे, जुग जुग को जाता। धन बाली भोली फिर सहज मरावे, मिलया करम विधाता। जिन हर रस चाख्या सब सुपाख्या, हर सर रहे पर पूरे। नानक कामन जासा फिर पावै, शब्द रहे हदूरे। सुहागणी जाए पूछो मुइये, जिन विचो आप गवाया। फिर का हुक्म न पायो मुइये, जिन विचो आप न गवाया। जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग से रलिया माणै। सदा रंग राती सजे माथी, अंदर नाम वखाणै। कामन वड भागी अंतर लेवलागी, हर का प्रेम सुभाया। नानक कामन सजे राती, जिन सच सिगार बनाया। हों मैं मार मुइये तू चल गुर कह पाए, हर वार पा हर वार रावे सदा मुइये। निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए। सदा सुहागण नारी फिर रियाला, जोवन वाला आंदन कंत सुवारी। हर वार सुहागो मस्तक भागो, सच्चे शब्द सुहाए। नानक कामन हर रंग राती, जा चलै सतगुर पाए। वडहंस महला तीजा, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का।

गुण संग्रह है, अगप गुण वीक्षण है, आपया पिछाण है, गुरमत पाई वडे वड्याई सचे संदरस पी जय, नानकार के भगत मनाली गुरमुख विरला की जय। गुरमुख खेती हर अंतर बीजी है, हर लीजय श्री जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंज तू लाह लै प्रथाए राम। लाहा प्रथाए हर मन वसाए, धन के तीवा पारा, हर नाम त्याए मन वसाए, बुझे गुर बिचारा। मान मुख खेती बनज करता के तृष्णा भुख न जाए, नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुभाए। हर व्यापार से जन लागे, जिन्ना मस्मणि बड़ भागो राम, गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द भरागो राम। मुख मस्त भागो सच भरागो, साचरते विचारी, नाम बिना सब जग बौरा, न सुधे हो मैं मारी। साचे शब्द लाग मत उपजय, गुरमुख नाम सुहागो, नानक शब्द मिले पौ पंजन, हर रावय मस्तक भागो। खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मो मने वडियाई, हुक्मो मन वडियाई राम, गुरमति हुक्म बूझिया, हुक्म मेल मलाई राम। हुक्म लाई सह समाई, गुर का शब्द पारा, सची वडियाई, गुर ते पाई सह सुवरण हारा, पौ पंजन पाया अब गुवाया, गुरमुख मेल मिलाई, कहो नानक नाम निरंजन गम गोचर, हुक्म रह समाई, बड़ संभाला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो, अपने घर तू सुख वसै, पौन सके जम काल जियो, काल जाल जम जो न साके, सच सब लिवलाए, सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजे पाए परम गति मन मंग मोही जमकाल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल। मन मेरा अंतर तेरा निदान है, बार वस्त न पाल, जो पावे सो पुंज तो, गुरमुख नदर निहाल, गुरमुख नदर निहाल, मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई, मन मुख अंधले ज्ञान भी हुआ, मन मुख अंधले ज्ञान भी होने, दूजे पाए खुआई, बिना वे को छूटी नाही, सब आदि जमकाल, नानक अंतर तेरा निदान है, तू बार वस्त न पाल। मन मेरा जन्म पदार्थ पाए, कहे सच लगे वापारा, साध गुर सेवने अपना, अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा, हर नाम प्यारा, नामे नौनत पाई, मन मु पाया मोह व्यापे, दुख संतापे, दूजे पथ गवाई। हम मैं मार सच सब समाने, सच रते दिखाई, नानक मानस जन्म दुलंब है, सतगुर बूझ बुझाई, मन मेरे सतगुर सेवन अपना, से जन वड भागी राम, जो मन मारे अपना, से पुरख बैरागी राम, से जन बैरागी सच लेव लागी, अपना आप पछाणिया, मत ने चला तुगूड़ी, गुरमुख सहजे नाम विखाणिया, कामणित कारी माया मोह प्यारी, मन मुख सोए रहे अभागे, नानक सहजे सेवा गुरे अपना, से पूरे वड भागे, बड़ा समान ला तीजा। रतन पदार्थ मंजिया है, सतगुर दिया बुझाई राम, लाला भर भगता है, गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए, जिसा बुझाए ला भगत सह सारे, बिन भक्ति सुख न होई, दूजे पथ कोई, गुरमत नाम आधारे, वखर नाम सदा लाभ है, जिसनो एत वापार लाए, रतन पदार्थ मंजी है, जा सतगुर दे बुझाए, माया मोह सब दुख है, खोटाए वापार राम, कूड़ बोल बिक खामणी, बहु वदय विकारा राम, बहु वदय विकारा, सहज संसार बिना वै पथ खोई, पड़ पड़ पंडित वाल खाने बिन बूझे सुख न होई, आमन जाना कदे न चूके, माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है, खोटाए वपारा, खोटे सरे खोटे खरे सब परखियन, ते सच्चे कह दरबारा राम, खोटे दरगह सुटियन, उबे करन पुकारा राम, उबे करन पुकारा, मुक्त गुवारा, मन मुख जन गुवाया, भिख्या माया जिन जगत भुलाया, सचा नाम न पाया, मान मुख संता नाल वैर कर, दुख कटे संसारा, खोटे खरे परखियन, ते सच्चा दरबारा राम, आप करे किसे आखिया, आप करे किसे आखिया, होर करना किछु न जाई राम, जित पावत तलाय सी, ज्यो तिस दी वडियाई राम, ज्यो तिस दी वडियाई, आप कराई वरियाम न फसी कोई, जग जीवन दाता कर्म दाता, आपे बख्शे सोई, गुर प्रसादी आप गुआई, नानक नाम पत पाई, आप करे किसे आखिया, होर करना किछु न जाई, वडहंस महला तीजा। सच्चा सौदार नाम है, सच्चा वापारा राम, गुरमति हर नाम बनजे, अत मोड़ा पारा राम, अत मोड़ा पारा, सच वापारा, सच वापार लगे वड़ भागी,
अंतरवार भक्ति रते राते सच नाम लिख लागी। नगर करे सोई सच पाए गुरु कै सद विचारा, नानक नाम रते ते नहीं सुख पाया साचाय के वापारा। हो मैं माया मेल है माया मैल परी जय राम। गुरमति मन रसना रस पी जय राम, रसना रस पी जय अंदर पी जय। साज शब्द विचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया, शब्द काट पी अपनहारी। जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवि जय। नानक नाम रते से निर्मल हो रो मैं मैल परी जय। पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक देश, किस पै करे पुकारा राम। माया मोहत अंतर मैल मल लग गए माया के व्यापारा राम। माया के व्यापारा जग प्यारा, यामन जान दुख पाई। बेका कीड़ा बिकसो लागा बिष्टा माय समाई। जो तुर लिखा सोय कमावे कोई न मेठन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूर्ख कूक मुहे गवारा। मूर्ख कूक मुए गावारा, माया मोह मन रंगिया मोह सुध न कही राम। गुरमुखे मन रंगिया दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई सच समाई सच परे भंडारा। गुरमुख होवे सोई पूज सच सुवरण हारा, आपे मेले सुवर मिले होर कहना किछु न जाए। नानक बिन नावै परम भुलाया, एक नाम रते रंग लाए। बड़े हंस मरला तीजा, ये मन मेरे आया वा गुण संसार है। सच बेड़ा राम, आपे सच्चा बख्श लै फिर होए न फेरा राम। फिर होए न फेरा अंत सच नि बेड़ा, गुरमुख मिले वडियाई। सच रंग राते सहजे माते सहजे रह समाई। सच्चा मन पाया सच वसाया, सब रते अंत निबेरा। नानक नाम रते से सच समाने बहुर न पग जल फेरा। माया मोह सबर लै दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब होत है हेते पलचाई राम। हेते पलचाई प्रभु कमाई मेट न सके कोई। जिन सिष्ट साजी सो कर वेखै ते जेवड़े वरण कोई। मन मुखंदा तप तप खपै बिन सबदा सांत न आई। नानक बिन नाव सब कोई भुला माया मोह खुआई। ए जग जलता देख भज पै हर सिर नाई राम। अरदास करी गुरपुर आगे रख ले वो देहो बढ़ाई राम। रख ले वो सिर नाई हर नाम बढ़ाई। तो जेवड़ वरण दाता सेवा लाग सेवड़ भाग जुग जुग को जाता। जात सात संजम करम कुमा भय बिन बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसन सजू जाए जो जाए पवै हर सिर नाई। जो हर मत दे साऊ पुजै होर मत न काई राम। दरबार एक तू आपे देह बुझाई राम। आपे देह बुझाई अवरण पाई गुरमुख रस चाखिया। दर साचा सदा है साचा, साचा सब सुपाखिया। घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते से महल पायन मत परवान सच साई। वड़न समाला चौथा छंते कोंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन मेरे मन सतगुरु प्रीत लगाई राम। हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसारण हारा। अवड़ पाकी गुरु दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठ सतगुर सेव जित सेव जय संत प्रसांत पाई। मेरा मन सतगुरु प्रीत लगाई। हो जीवा सतगुर देख सरसे राम। हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल पर गासे हर हर हर नाम नमन निध पाई। हो मैं रोग गया दुख लातार सह समाद लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन पर से। हो जीवा सतगुर देख सर से। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हो मन तन देवा तिस काट शरीरा राम। हो मन तन काट काट तिस देई जो सतगुर वचन सुनाए। मेरे मन बैराग पै बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुख दाते देव सतगुर चरनाम धूरा। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवरना कोई राम। हर दान देवै हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पो भागा। सेवक पाए मिले वट पागी जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक राम मिलाए मिनस मिल सत गुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता मैं अवरना कोई।
ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਉ ਗੁਰਬਿਨ ਹਉ ਗੁਰਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸਤ ਗੁਰਮੇਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਉ ਢੂੰਡਣੇ ਦੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਹਰ ਘਰ ਪਾਇਆ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰ ਏਕੋ ਜਾ ਤਾਰਾ ਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣੀ ਹਉ ਗੁਰਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ ਤਿੰਨ ਚਰਨ ਸਿਰੇ ਵਾਇਮ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਕਹਿ ਪਾਏ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਸਿਰੇ ਵੈ ਤਿਨ ਕਹਿ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਤੂੰ ਵਰਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਰਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਅੰਦਿਨ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤ

आशीषाए। बाबा सचड़ा मैल न चुकाए, प्रीतम की याद है आशीषाए। आशीषा देव भक्त करो, मिलया क्या क्या मेलो। एक भूले ना वो थे वो था वो गुर सब भी सच खेलो। जा मार्ग ने जाना सब समाणा, जुग जुग साचा वैसे। साजन सहन मिलो संयोगी, गुर मिल खोले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग में, दुख सुख लेख लिखाया। लिखड़िया साहा ना टलाए, जेहड़ा पुरब कमाया। बस साचा लिखिया अमृत बिखिया, जत लाया तित लागा। कामण यारी कामण पाए, गौरंगी गलतागा। होची मत पया मन होचा, गुड़सा मक्खी खाया। ना मर जा आया कल भीतर, नांगो बंद चलाया। बाबा रोवो जे किसै रोमना, जानी अड़ा बंद पठाया है। लिख अड़ा लेख न मिटिया, दर हकार डाया है। हकारा आया जिस पाया, रुने रोमन हारे। पुत भाई पति जे रोवे, प्रीतम मत प्यारे। पय रोवे गुण सार संभाले, को मरे नमया नाले। नानक जुग जुग जान से जाना, रोवे सच संभाले। वडहंस महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्राप सचड़ा हर सलाई है, कार सब किस करने जोग। सा धन रंड न कब हो वै सही, ना कदे हो ना कदे हो वै सोग। ना कद हो वै सोग, अन्न रस भोग। साधन मैल समाणी, जिन प्रयो जाता कर्म दाता बोले अमृत बाणी। गुणवंती आ गुण सारा, अपने कंत संभाले ना कदे लगे भी जोगो। सचड़ा फिर सलाई है, सब किस करना है जोगो। सचड़ा साहेब सब पछाणिया है, आपे लय मिलाए। सातन प्रेप कै रंग रती, विचो आप गवाए। विचो आप गवाए फिर काल न खाए, गुरमुखे को जाता। कावण इच पुनी अंतर भिनी, मिलिया जग जीवन दाता। शब्द रंग राती जोवन माती, फिर कै अंग समाए। सचड़ा साहेब सब पछाणिया है, आपे लय मिलाए। जिनी अपना कंत पछाणिया, हो तिन पूछो संता जाए। आप छोड़ सेवा करी, फिर सचड़ा मिला सहज सुभाए। फिर साचा मिलाए, आए सच कमाए। साज सब धन राती, कदे नारहण सदा सुहागण अंतर सह समाधि। फिर रहा पर पूरे वेखा दूरे, रंग माणे सह सवाए। जिनी अपना कंत पछाणिया, तिन पूछो संतां जाए। फिर विशुनिया भी मिलाए, जे सतगुर लागे साचे पाए। पाए सतगुर सदा दयालाए, अवगण शब्द जलाए। अवगुण सब जलाए, दूजा भाव गुआए। सचे ही सच राती, सचे सब सदा सुख पाया। हो मैं गई पराती, फिर निर्माण सदा सुखता। नानक सद मिलाए, फिर विशुनिया भी मिलाए। जे सतगुर लाग है साचे पाए, वडहंस महला तीजा। सुनयो कंत महलियो, फिर सेवा शब्द विचार। अवगुणवंती फिर न जाने, मुठी रोवे कंत विसार। रोवे कंत संभाल सदा गुणसार, ना फिर मर न जाए। गुरमुख जाता सब विचाता, साचे प्रेम समाए। जिन अपना फिर नहीं जाता, कर्म दाता कूड़ मुठी कूड़ियारे। सुनयो कंत महलियो, फिर सेवयो शब्द विचार। साफ जा

शब्द पैर न पायो जन्म गवायो रोवे अवगुणियारी झूठी। फिर जग जीवन किसनो रोये रोवे कंत विसारे सब जगह को पायो न आवन जान संसारे। सो पर सच्चा सादी सच्चा है ना उमर न जाए भूली फिर धन।

नाम हर गुर दिया, हर हर्त पर्त सदा करे निसार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का।